अस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्म देवता निरस्ताशेष विघ्नतया।

ज्योताय नमः। ओम लोलिताखिल दैत्याय नमः। ओम सत्यानंद स्वरूपिणे नमः। ओम अपवर्ग प्रदाय नमः। ओम आर्य शरण्याय

अग्ने अतिर्वर मनसा गृणान अस्माकं बोज्य विधातनो नाम वृतनाजगुं सहमानमुग्नमग्निगुं भवेम परमा सरस्तात् सरः